0: सहे मनु गुरपद साध जप पाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच करो कृपा सारे आखो आद सच जुगाद सच
1: है भी सच नानक होसी भी सच
0: करो कृपा जी।

नाम साचा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है, कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है। जेड़े नाम जपदे ने ना उन्हां नूं मेरे साहब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उन्हां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे उन्हां ते शतर अनेक चलावत कावत उतन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर कर मने हाथ उन्हां नूं अपना हाथ दे के बचा लैंदा। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे अग दे लाटां बगदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुठा मूह थले नू लता तां नू ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जो जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है। उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नू याद करदा सी। उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए 24 घंटे वाहगुरु की याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छड़ाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छड़ाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छड़ाया, खसम दे वाहेगुरु ने, ते जदों इथों छड़ा के बाहर ले आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के, उस तस्वीर नू वेख के उथों छड़ा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छड़ा के बाहर लिया विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गर्भे निकल आया। जदों बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया। फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विचों बाहर आया।

सरल जिहा बचने एकाग्रता बख्शियो कि सतगुरु दे दर्शन धनता दे योग ने, जो गुरु दे दीदार करने ने वो धनता दे योग ने। मगर भाई गुरुदास जी कहते ने जिहड़ा दर्शन करन आया है वह भी घट नहीं, धन धन गुरसिख परसने आया। जिथे गुरु दे दीदार धन ने वह सिख भी धन आ जिन्हें आण के गुरु दे दीदार किते ते कन्ना विच आवाज पई सारे दुखां दा दारू।

परमेश्वर का नाम जपण वाली दोवां का पक्ष पेश किया है। जिहड़ा एक अमृत वेले उठदा नितनेम करदा है, एक दिन नहीं नितनेम करदा, जिहड़े करदे उन्हां नूं पता है, दूसरे नूं की पता है। जिहड़े अमृत वेले उठ के केसी इशनान करदे ने, अमृत वेले उठ के वाहिगुरू का जाप करदे, उन्हां नूं पता है कि बाबा जी की कहिंदे, कहिंदे अज ना सुत्ती कंत सिओ, अज ना बोलो घबराओना, अज ना बाबे नानक दी बाणी है रसना ते लियाओ, अज ना सुत्ती, अज ना नितनेम कीता, अज पति परमेश्वर दे नाल सुत्ती दा मतलब जुड़ी नहीं, अमृत वेला नहीं संभालिया। ते सारा दिन पता की हुंदा है, अंग मुड़े मुड़ जाए, अंग हथां पैर इतना हो के जा रहे ने, कोई चीज चंगी नहीं लगती, हर कड़ी हर फुरने नाल कुछ इतना महसूस हो रहा है कि मेरी ये जिंदड़ी है अज तेरा कुछ छुट गया, मेरी ये जिंदड़ी है अज तू कुछ भुल गई, इतना लगता वा कि अंग मुड़े मुड़ जाए, कितना शरीर औखा हो रहा है, दर्द हो रही है, महसूस हो रही, पीड़ा हो रही है, ओदे विछोड़े दे विच कि अज अमृत वेले उठिया नहीं, इशनान नहीं किया, उस मालक नाल जुड़िया नहीं, अज ना सुत्ती कंत कहिंदे पति नूं, उस पति की याद विच जुड़ी नहीं, अमृत वेले चौंकड़ा मारिया नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके जपिया नहीं, वाह गुरु वाह।

0: एक साहब ने वचन बड़ा प्यारा किया, समा दौड़ गया मेरा, कहो नानक ताके बल जाओ। बोलो कहो नानक ताके, मैं ओदे तो बलहार जाना। स्पष्ट जिहा शब्द है, कहो नानक ताके बल जाओ, कलयुग में पाया जिन नाओ। कलयुग में पाया जेडे कलयुग जपदे ने सतनाम श्री वाहे, कलयुग जपण नहीं दिंदा। इन्हें टुंड मरुंड कर दिता सारी दुनिया का जीवन, कोई फुल खिड़दा ही नहीं, सारी दुनिया नू अग लगी ईरखा दवै दी। मगर साहब कहिंदे मैं बलहार जाना जिहड़ा कलयुग विच वी कहिंदा सतनाम श्री वाहे। ते तुसी भागां वाले हो जिन जिन नाम ते आया, तिनके काज सरे हर कारज मेरे सतगुरु सवार दिंदे। गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते, गरंटी दे शब्द, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, उन्हां दे काज सवारता परमेश्वर जेड़े जपदे ने सतनाम श्री वाहे। आओ हुण अपनियां मन बिरतियां नूं खलारो, जुड़ो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे चरणां विच, सुरत नूं टका के रखियो। मेरा सतगुरु कृपा करे मन बाहर ना जावे, सुरत बाहर ना जावे। आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी।
0: वाह।
1: नाती धोती संबही सुती आए नचिंद,
0: आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पहली गल तां गुरमुखो चेते रखियो, घरां विच की बोलना हुण, पंजाबी बोलिया करनी, बच्चियां दे नाल पंजाबी पढ़नी, पंजाबी बच्चियां नूं पढ़ाउणी है। इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यारे वचन कर रहे, कहिंदे नाती धोती संभी, नहा लिया धो लिया अपने आप नूं संभाल लिया, मगर सब कुछ करन तों बाद फिर सौं गई। जदों परमेश्वर नूं मिलण दा वेला आया फिर सौं गई। नाती धोती संभी सुती आए नचिंद, एक अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह साहब ने होर कीता है। वह कहिंदे पढ़ लिख गया विद्वान बन गया, मगर सारा कुछ पढ़ लिखते गया, मगर जदों परमेश्वर की बंदगी की गल आई उदों बेहोश होके सौ गया। जिथे नितनेम की गल आई, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर जिथे नितनेम की गल आई, सिमरन की गल आई, उस गलों बेहोश होके ए जीव सौ गया। इथे मेरे सतगुरु का यह भी अर्थ बन सकता है, कोई कोई अमृत वेले उठिया होए, नाता होए, धोता होए, परमेश्वर की बंदगी करता होए। महापुरश बाबा प्रीतम सिंह साहब होए ने, उन्हां दे कोल जिहड़े विद्यार्थी रहिंदे सी, ते जदों अमृत वेले 2 बजे उठा लैंदे सी, आखो सतनाम श्री, 2 बजे इशनान करा के सिमरन बंदगी विच ला लैणा, जदों सिमरन बंदगी करके 5 बजे तक 3 घंटे अभ्यास चो नितनेम चो उठाउणा, ते कईआं मेरे वर्गियां आलसियां ने समझणा फिर, ते उहने आवाजां मारदे फिरना मत्थे ते हथ फेर फेर के, ओ भलिओ जे नितनेम करके सौ जाइए ते इतना वा बड़ी सुंदर पैली बना ली होवे, ओदे विच बीज पा दिता होवे, ओदे उते सुहागा मार दिता होवे, मगर ओदे उते बरसात हो जाए ते की जम जांदी उते, और रुकड़ी जी जम जांदी है ना, फिर ओ फेर नहीं पैंदी है दंदा जिहा वाली, ते फिर बीज विचों निकलदा वा। कहण लगे इतना ओ बंदगी कीती उगदी नहीं गी, जदों आपां इक वार सवेरे उठ कलोईए सिमरन कर लईए ते फिर सौ जाइए घराड़े मारन लग पईए। इथे भी बाबा जी इस तरह के वचन करते ने, कहिंदे सब कुछ जान लिया ज्ञानवान हो गया, मगर परमेश्वर दे वेले आण के सुती होए नचिंद, बोलो सुती होए, उस वेले जदों सिमरन बंदगी दा वेला आया, विद्वता तां प्राप्त कर ली, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर सिमरन दे वेले नचिंद होके सौंगी, फिर की रह गया जी।
1: फरीदा रही सो बेली हिंग दी, गई कथूरी गंध।
0: कथूरी दा मतलब हुंदा कस्तूरी, की मतलब हुंदा जी?
1: कस्तूरी
0: कहिंदे ने जिहड़ी कस्तूरी दी सुगंध छुट्टी सी ना अंदरों अमृत वेले सिमरन बंदगी करके, ओ फिर उड गई सौण दा सदका। ते हिंग दी, जदों हिंग दी बो आउंदी आ जिहा इलाके जिहदे च हिंग हुंदी होवे, जां जिहने मुंह दे विच हिंग पाई होवे, ते कदी किसे ने आख्या हिंग दी खुशबू आ रही, की कहिंदे ने? हिंग दी बोआरी। कहिंदे फिर जिहड़ा सिमरन बंदगी वाला सुभा सी, जिहड़ी नाम बाणी वाली बिरती सी ना, ओह ते सौण करके निचिंद होके बेहोश होके सौण करके विचों कस्तूरी वाली खुशबू ते उड गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, रही सो बेड़ी हिंग दी, बेड़ी हिंग दी बदबू ही रह गई मुंह दे विचों, केवल विद्वता रह गई, केवल ते केवल एदियां सियाणपां ही रह गईआं, मगर कस्तूरी वाली जिहड़ी खुशबू सी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उड़द्या पैंद्या सौंद्या ए मुंह जरा वाहगुरु निकलना सी, जेड़ी परमेश्वर का मिठा सुभा सी, ओदे मुंह माथे त्रिकुट्टी दिष्ट करूर, बोले कौड़ा जे बाकी फूड, ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਤੀ

वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी ओदे तो बिना उदास हो गई है, सिर देण नूं तैयार है। आंदी हां सजना नैण हमारे पिरिया रंग रंगारे, मेरिया अखां ओदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नूं नहीं देख दियां, ए 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी।

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जेड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवांदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकदा है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकदा है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे हो बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्स दिखाए जी एक छिन दर्स दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

हे साहब जी ए जड़ी रोज अरदास हुंदी आखो सतनाम श्री हे साहब जड़ी रोज अरदास हुंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रचिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चिया वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करौनी पवे रोज सुते सिद्ध पटीशन हो जाए रोज सुते सिद्ध अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागां वाला दिन आउणा है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड्ड दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे कहिंदा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो

0: कड़िए कड़िए मारिए पहली लहर जाए।
1: वेखो बाबा जी का कल वाला बचन आप जी ने सुनिया सी कि दर दरवाजे जाए के, बोलो दर दरवाजे क्यों डिठो कड़ियाल वेख्या जे कदी ए नदोशा मारिये एनु नदोशे नु मार पैंदी। हम दोषां दा क्या असी दोषी जने आ, असी किन्ने क दोष कीते ने अपने आप नु पुछो। दाग दोष मुंह चलिया लाए दरगे बैसन नाई जाए जेता मोह प्रीत स्वाद। आपा कहने जी मैं केड़ा दोष कीता है, जिन्ना मोह आ ए भी दोष आ, जिन्नी प्रीति संसार ना ए भी दोष आ, ते जिन्ने जीभा दे स्वाद ली रस माने जे ए भी दोष ने। जेता मोह बोलो जेता प्रीत स्वाद, ए तीन गल्लां गिण गए मेरे गुरु नानक पातशाह। जिन्ना मोह प्रीति ते स्वाद आ ना लाए तू मुंह नू, ए सबा कालख दागा दाग, ए तेरे मुंह दे ते कालख दे दाग लग गए ने। ते जिन्हां दे मुंह दे ते कालख लगी होवे, जिन्हां दा मुंह काला होवे, उहनू चंगे लोकी कोल नहीं बहण दिंदे। एक बार

बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बलावहो ज्यों बलावहो त्यों नानक दास बोले ज्यों बलावहो ज्यों बलावहो।

बड़े प्यारे वचन ने, समझने की कोशिश करियो। एक बार आखो सतनाम श्री वाहे। खोजद्या खोजद्या ओ अमृत मिल गया। जेड़ा अमृत पीण दे नाल जीव अमृत अमर हो जांदा है। अमृत पीवे अमर सो होए। बोलो अमृत पीवे अमर सो होए। एहो हर रस पावे जन कोए। कोई किते करोड़ां दे विच्चों नहीं ते छोटे छोटे संख्या ने अमृत तो दूर रख लेना है। जेदे ते सतगुरु गरीब नवाज बाबे नानक दा हर दरवाजा मेहर दा जेदे घर नूं खुल गया ओदी रूह ने आखना चलो अमृत छकी है गुरु वाले बनी है। नहीं ते निके निके फुरनिया ने एवें निके निके फुरनिया ने गुरु दे अमृत वांझिया कर देना है। एहो हर रस बोलो एहो अमृत की आ हरी दा रस आ। एहो हर रस पावे जन कोए। कोई दा मतलब कोई करोड़ां दे विच्चों जेदे ते मेहरबान बापू होवे ते जिन्हां नूं ए हरी दा रस मिल गया अमृत नाम आ उस हरी दे रस दा ते साहिब कहिंदे ने अमृत पीवे अमर सो होए। अमर हो गया। अमर दे अखरी अर्थ समझो अमर। अमर शब्द आपां कहिंदे कई वार बहुती वार ते पता नहीं हुंदा सानूं। अमर मरन तो रहत जिन्हें हुण मरना ही नहीं। साहब कहिंदे ने यह पक्की गल आ जिस जीव दे मूंह दे विच अमृत पै गया उन्हें नहीं मरना मुड़के। अमृत पीओ सदा चिर जीवो। हुण सदा चिर वाला जीवन मिल गया। रोज रोज दा आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुर देव। सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा आवा गवन दा चक्कर आ जीव आत्मा दा जदों गुरु दी शरण विच आउंदी आ गुरु दी पनाह विच आउंदी आ गुरु दी बारगाह विच आण के डिग के अमृत दी दात मंगदी आ अपने बापू दे कोलों ते जन्मां दी विछड़ी होई नूं जदों अमृत मिल जांदा है उस दिन इहदा आउण जाण दा चक्कर मुट गया। आवा गवन मिटे। बोलो आवा गवन। बड़ा ढिल्ला बोलदे हो गज के बोलो। बाबा नानक तुहाडे ते मेहरबान होवे। आखरी दीवान है अज पता नहीं नदी नाम संजोगी मेले ने रस बख्शो। दास नूं भी सेवक दिओ सेवा दिओ। आवा गवन मिटे। बोलो आवा कदों प्रभ सेव जदों प्रभु दी सेवा विच हाजिर हो गया जदों आप त्याग शरण गुरदेव आपा छड के त्याग के गुरु दी शरण विच जीव आत्मा डिग पई ना आण के ते साहिब कहिंदे ने उदन इहदा आवा गुण मिट गया। इउं रतन जन्म का होए उधार। ए रतन जन्म दा उधार हो गया इहदा भला हो गया जीव आत्मा दा। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने इह जिहड़ा हरी दा रस आ जिन्हां नूं मिल गया अमर हो गए। उन्हें मुड़के मुड़ना नहीं। उन्होंने मुड़के किते नहीं आना। कोई जीव आत्मा चक्कर दे विच ना उस दिन तो ए अमर हो गई जिस दिन तो इनू अमृत मिल गया। अनंत अनंत जन्म दी बंदगी करन वाले बहुत सारे लोग जिन्हां नूं अमृत नहीं मिलिया। मैं सतगुरु की हजूरी विच मेरे गुरु की फिलोसफी मुताबिक कह रहा वा कि उन्हां दा आवा गवन नहीं मिटदा जिहड़ियां रूहां अमृत नहीं छकदियां। आखो सतनाम श्री। फिर आना पैंदा है फिर आना पैंदा है फिर आना पैंदा है। कहिंदे जी असीं बाणी बड़ी पढ़दे हां सिमरन बड़ा करदे हां जे अमृत ना छकीए ते साडी गति नहीं हो सकदी। नहीं हो सकदी। ए डंके दी चोट ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज दे विचारां मुताबक दास राव जी दा कह रहा है कि जिन्ना चिर जीव आत्मा अपना सिर दे के गुरु दे चरणां विच मिटदी नहीं जिदन मिट गई उदन बन गई जिदन मिट गई उदन ही बन गई। जिन्ना चिर मिटदी नहीं जिन्ना चिर आण के डिगदी नहीं चरणां दे विच उन्ना चिर आवागमन मिटदा नहीं। मेरा सतगुरु गरीब नवाज पातशाह होर इशारे करनगे आखो सतनाम श्री। मेरे साहब नूं जदों सिद्धा ने पुछया सतगुरु जी तुसीं मैनूं कृपा करके दसना करो कि जे तुसीं हरिद्वार गए हो ते पांडे तुहाडे चरणां उत्ते डिगे ने ध्यान देना जित्ती नौ खंड पृथ्वी। बाबे ने कोई एक देश नहीं जित्या। बाबे ने दो देश नहीं जित्ते। इह ते साडी बदकिस्मती आ कि धन गुरु नानक पातशाह दे चरणां ते चलण वाले प्रचारक मुक गए। धन गुरु नानक वर्ग वर्गे दरवेश प्रचारक नहीं इस कौम विच रहे। जे हरिद्वार गए ऐसे ज्ञान दे तीर मारे हरिद्वार दे पांडे पैरां ते डिग पए। जे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी वाले पैरां ते डिग पए। जे मक्के मदीने गए उत्थे मक्का मदीना गढ़ बगदाद नवाए के। बोलो गढ़ बगदाद आ नवाया ना तुसीं कहिंदे हो नवा दिता। टैलीविजन दे उत्ते रोज अखबारां च पढ़दे हो कि बगदाद नूं नवाता मगर इहनूं नवाउण नूं किन्ना चिर लगा ते की वरत्या।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਵੀ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਵਾਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਪੱਟਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ

0: पिता सम तरला पाओ पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे पिता
1: समझावेंगे पिता समझावेंगे।
0: धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज समझा इन्हां अपने सिखां नूं ये तेरी गोद विच आण के रोज बैंदे ही इन्हां नूं तपदियां सड़दियां नूं होर कोई जगह नहीं मैं होर थाओ ना ही जिस पे करूं बेनती रोज कहिंदे ही आउंदे भी तेरी गोद विच ही प्यो भी तेनू मानदे ही साहिब माता नूं साहिब कौर नूं मां भी मानदे ही मगर एक दूसरे दियां लत्तां खिंचदे ही एक दूसरे दे दुश्मन ही है तेरे सिख हे मेरे सतगुरु इस पंथ उत्ते बौड़ी कर हे मेरे गरीब नवाज पातशाह इस पंथ उत्ते तरस खा रहमत कर बौड़ी कर इस पंथ दी इन्हां विच आपस विच प्रेम बख्श कदी तू गुड़ती दे के कहा सी सच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो सतगुरु ए उल्टे चले गई है नफरत कर दई एक दूसरे ना हे मेरे गरीब नवाज तुसी गुड़ती दित्ती सी जिन प्रेम कियो ए नफरत कर दई इन्हां नूं तरस कर रहम कर इन्हां दे पैरां तों लैके सिर तक पै कोड़ नूं अपनी नजरे अनायत नाल ठीक कर तरस करो महाराज इस पंथ दे उत्ते ए तेरी शरण विच आण के बाणी पढ़दे ने ना को वैरी ना ही बगाना ए झूठ मारदे ने तेरी शरण विच इन्हां ने सारे ही वैरी बनाए ने इन्हां ने सारिआं नूं बगाने समझिआ है हे सतगुरु ए उत्तों उत्तों कहिंदे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई इन्हां दे अंदरला कोट ठीक करो ए जितना बाहरों सोहणे लगदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब अंदरों भी सोहणे बनाओ इन्हां नूं हे मेरे मालिक इन्हां दा इलाज करो मेरा वैद गुरु गोबिंदा हे मेरे मालिक वैद बन के इन्हां दे अंदरले कोण नूं ठीक करो पंथ नूं एक दूसरे नाल प्यार कराओ ए ते सारे संसार नूं गल विच लकड़ी लैके इन्हां कहना सी अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे तुसी ते अमृत छका के भाई कन्हैये जी ने वर्गे प्यारियां नूं कहा सी तू पास हो गया है तेनू कोई बगाना नहीं दिसदा हे सतगुरु असी एक संगत विच बहिके एक थाल दा कड़ा प्रसाद छकन वाले एक लंगर दे विच पंगत विच बहिके लंगर छकन वाले असी मन करके एक दूसरे तो बड़े दूर हो गई सतगुरु तरस खा साडे दे उत्ते मेरे सतगुरु कहण लगे मैं खिमा लै लिया ते मन परमेश्वर दे चरणा विच वेच दिता सिद्धो जिदन तो मैं खिमा लै लिया परमेश्वर कोलों जिदन तो मैं नीवा पन लै लिया परमेश्वर कोलों ते मन जिहड़ा खराब करदा सी इह वेच दिता है सतगुरु अगे उदन तो खरा खरा आखे सब कोए बोलो खरा खरा फिर बोलो जी खरा खरा आखे एक दो शब्द हुंदे ने एक खोटा ते एक खरा जिहदे मन विच कोड़ होवे आपां कहिंदे मन दा औगण यारी कंत ना भावे मन की खोटी खोट कमावे मन दा खोटा बंदा खोट कमाउंदा है इत्थे गल्ला कुछ होर करदा है उत्थे कुछ होर करदा है ओ प्यारे ओ किथे तुर जाओगे किथे जाओगे केड़े साहब दे अगे ओ साहब दे अगे जाओगे जेड़ा साहब सतगुरु अंदरों निरवैर है सतगुरु उस गुरु दे सामने पेश होना जाके जेड़ा अंदरों निरवैर आ उस गुरु दे सामने एक दिन जाके पेश होना है सतगुरु सबना दा भला मनाएदा बोलो सतगुरु उस गुरु दी शरण विच जाना है उस गुरु दे सामने जाना है केड़ा मुंह लेके जाओगे केड़ा कोड जाके विखाओगे मालक नू अपने अंदर नू शुद्ध करो तरला पाओ एक बार नक रगड़ो आण के गुरु दे अगे हे मेरे सतगुरु मेरे अंदर दी बीमारी ठीक करो मेरे साहब कहिंदे जिदन तो मैं मन गुरु नू दे के खिमा ओदे कोलो लै लिया उदन तो खरा खरा आखे सब कोए जे मके गया वा ते अंदरों बारों एक सा ओ अखां वालिया नू नजर आ गया उन्हें क्या खरा आ गया वो पैरी पै गए जिन्हां नू खरा ज्ञान सुनाया मके मदीने वालिया नू सुनाया मके मदीने वाले काजी पैरां ते डिग पए गढ़ बगदाद वालिया नू सुनाया गढ़ बगदाद नीवा हो गया मुल्तान विच गया मुल्तान वाले पैरी पै गए क्योंकि मन दे दिता सी ते खिमा गुरु कोलों लैके खरा हो गया सा खरा नानक पारख आप बोलो नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया मेरे सतगुरु दे चरणा च बेनती करो मेरे साहब कहिंदे ने सिद्धो ए सारी करामात अमृत दी बनी ए अमृत करके मेरा मन इन्ना शुद्ध हो गया है खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खांदिया पींदिया जिन्हां चिर मुंह दे स्वाद लाए सी उन्हां चिर ते मरन दा ही ना पता लगा ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਬੋਲੋ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ, ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਇਤਨਾ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਤੋ

बारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या, मैं कह दिता है दाता देने वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आके गए ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आग्या है की नी, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते ए गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भोखी कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुक गईयां गड्डियां मंगणियां, मुक गईयां दुनिया दीयां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्श प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनूं पता लग गया असली दात की आ, देख जीवां गुर तेरा दर्शन दे।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच खैपी सच नानक खुशी पी सच।

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खै ती सच नानक खुशी पी सच

गुरु प्रभु तुम्हारी किस रखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जी।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निघी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनों, चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों आप रोज रोज सरवण करदे आ रहे। मन बिरतियां एकागर करो, भगत जी दे इस सलोक नूं आधार बना के मैं कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख रखण दा निमाणा यतन कर रहा। भगत जी कहिंदे ने, किजना बुझै कोई गल समझ विच आ ही नहीं रही, किजना सूझै कोई समझ विच नहीं आ रही, को राह कोई खेड़ा, कोई किधर जावा किधर ना जावा, एक गल पकड़ विच ध्यान विच नहीं आ रही। पुछया भगत जी क्यों, कहन लगे जदों मैं दुनिया नू नेड़े हो के वेखिया ते दुनिया मेनू जल्दी बलदी ते सड़दी नजर पई। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने भी इस गल दी पुष्टि की, और गुरु नानक पातशाह महाराज जी दा जीवन बिरतांत लिखदे वकत भाई गुरदास साहब भी कहिंदे ने, कहिंदे ने बाबा देखै ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दे साई। तो की जदों गुरु नानक पातशाह महाराज जी सुल्तानपुरों भाई मरदाना साहब नू नाल लेके निकले ने, तो की चार चफेरे उदों अग बल रही सी। ए उस अग दा जिक्र नहीं जो बाहरी अगन है, ए उस अग दा जिक्र कर रहे ने हजूर जो अंदरूनी अगन है। आरंभ दे अंदर मैं एक होर भी बेनती करदा चला, विद्वाना ने अग नू मन्या है चार तरह दी। नंबर एक दे उत्ते दावा अगन, जिस अग्नि दे नाल भोजन बनता है, जिहड़ी अग्नि कारखानियां दे अंदर, मोटर कारां दे अंदर, इंजनां दे अंदर, फैक्ट्रियां दे अंदर ते जंगलां दे अंदर लगदी है, इस अग नू विद्वाना ने नाम दिता दावा अगन। नंबर दो दे उत्ते बड़वा अगन, किधरे किधरे समुंदर दे पानी दे अंदर तेल मिलिया होवे ते उस तेल दे कारण लग जाए अग, उस समुद्री अग नू विद्वाना ने नां दे दिता बड़वा अगन। नंबर तीन दे उते आकाशी अगन, जिन्हों आपां बिजली दी चमक कह लईए या बदलां दी रगड़ाहट कह लईए, आकाश दे अंदरों दिसन वाली चमकन वाली उस अग नू नां दे दिता विद्वान सजना ने आकाशी अगन। ते नंबर चार जठर अगन, जो साडे मेदे दी तपश, मेदे दी गर्मी, वादा काटा, खादा पीता, कौड़ा फिका, सारे दा सारा जिथे जाके हजम हो जांदा है, पसम हो जांदा है, ओ अंदर दी अग्नि तंदूर वांग साड़ के जो राख बना देंदी है, उस अगन नू नां दिता गया जठरागन, जठर दी अगन। इस तो अलावा कुछ अग्नियां साडे मन दे नाल संबंध रखदियां ने, जिवें काम दी अग्नि मन दे नाल संबंध रखदी है, क्रोध दी अग्नि मन दे नाल संबंध रखदी है, तृष्णा दी अग्नि मन दे नाल संबंध रखदी है, हौमे दी अग्नि मन दे नाल संबंध रखदी है, ते ठीक दूसरे पासे ब्रह्म अग्नि ओ वी साडे मन दे नाल ही संबंध रखदी है। हुण मैं होर एक बेनती करदा चलां, अग दा सुभा है साड़ना, अग दा सुभा है उहदे कोल जो भी आ जाए उहनू बर्बाद करना, उहदी असलीयत नू मिटाउणा, उहनू ठीक सलामत ना रहण देना, इह अग दा सुभा है। भावें अग उह बाहर दी होवे ते भावें उह अग अंदर दी होवे, जे भोजन खाता पीता जठरागन अगल दे कोल पहुंच जांदा है ते उह भोजन नू राख बना देंदी है। दे जे दावा अगन दे पास लकड़ां टन्ना दे हिसाब नाल पाई जाओ, सारे यूपी सीपी दे जंगल वड वड के उस अगन दे अंदर पा दो दावा अगन दे अंदर, ते ओ अगन सारी लकड़ी दा रूप बदल के उनू कोले बना देंदी है,
काले रंग दी राख बनन

फरीदा थियो पवाही तब जे साईं लोड़ें सब एक छिजह है बिया लताड़ियां है ता साईं दे दरवाड़ियां है।

ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਗਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਬਾਰ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ। ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਤੋ ਖੈਰ, ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਲ ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, इह गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे परिये हाथ पैर तन देहे पानी तोते उतरसके है। ये बाहर दी मैल है, अगर हाथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। परिये हाथ पैर तन देहे पानी तोता पानी दे नाल तोलो उतरस खेहे लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गोन लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कहन लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाणगे साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापां कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना वह पाप आया, अपराध नहीं आया। इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिये मत पापां कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपण वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, है पावे दोवें गुना दोवें दोष दोवें तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आन के जेड़े बुरे कर्म करने असी शुरू कर देने आ उदा नाम अपराध है। अपराध नू डर हुंदा है हाथ कड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नू ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसे दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानता, बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानता तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है, नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने वो साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ, मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदा ही चला, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसे होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रे, पत्नी दे सामने हो रे, धी दे सामने हो रे, समाज दे सामने हो रे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर विच जाना पिया है, उत्थे कोई सोग समाचार है, इहदे अंदर भावे गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर भावे जैलसी है, अंदर भावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत ते कुशल है। ये जानदा है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते कमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैर इह मेरा विशा नहीं सी। अंदर जो बुराई है उहदा नां पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जांदी है उहदा नां अपराध। बस एक नुक्ता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध तां ही बणदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समां मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा किथे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है, उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने मुढ़ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो, फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो, फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहणियां नूं आप कट देंदे हो, दो टहणियां कट दे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवी जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगे ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करते हैं, कहन लगे भरिए मत पापा कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरिए मत पापा कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सर्फ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कै रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तो बाद ओ मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन। ओह धुपै नामे कै रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण ने सोच करै दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना। सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारों सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिल्कुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नूं की असर पएगा? ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा हो। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आण के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, यह मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे ही आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड़ी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एह अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाई है। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे वी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने वी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाई है, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, वी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो एदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाई है, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी सच पाई है, जे सच दे गुणा नू अपने हृदय विच वसा लवे। ते असी की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाई। असी एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाई है। एक जगह ते मैनू गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होवे, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना है, मैं ते सिर ते बद्दी पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जाता है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होवे इहदा ध्यान सानू सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रचना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा परम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे हुए मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावै ते नौंदा फिरे अठाठ तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे ना ही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना, लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे। कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना, क्यों नहीं पैना? कहन लगे ना ही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁੱਚਤਾ ਰੱਖ ਲੋਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ
रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल के उत्ते लिखा होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब

तन सुहागन नाओ सवरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह सहरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निघी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए पहला श्लोक है अज ना सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए। पहला एक बेनती नु समझन दे यतन करो कि इस दुनिया दे अंदर औरत दा जामा ते पावे मर्द दा जामा है। जदों चर्चा परमात्मा दी चले उदों परमात्मा दे सामने आपां सारे नार दे रूप विच ते परमात्मा पति दे रूप विच है। इस जग में है पुरख एक है होर सगली नार सबाए। इत्थे जामे दा फर्क नहीं कि जामा औरत दा है जामा मर्द दा है। उपदेश ही कली औरत नूं है मर्द नूं उपदेश नहीं उपदेश सांझा है। गल परमात्मा दी चल रही है इस करके भगत फरीद साहब परमात्मा नूं कंत कहिंदे ने अपने आप नूं नार कहिंदे ने। वैसे भी तुहाडे ज्ञात लई मैं बेनती करदा चलां गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो। गुरबाणी दे अंदर किधरे परमात्मा नूं मां किधरे पिता किधरे पुत्र किधरे भाई किधरे बंधु कह के बुलाया गया सत्कारिया गया। किधरे किधरे गुरबाणी दे अंदर परमात्मा नूं मालक ते स्वामी कहा गया गोपाल कहा गया। गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दे संबंध विच कबीर साहब इस तरह भी कहिंदे ने कहे कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। परमात्मा मैं तेरे दर दा गोला गुलाम हां और तेरी गिरफ्त विच हां हुण मर्जी तेरी है तू मैनू जिंदा रखे तां भला है तू मैनू मार देवे मेरा तां वी कोई इतराज नहीं। उत्थे अपने आप नू गोला ते परमात्मा नू मालक मन रहे ने। सूफी संतां ने तकरीबन तकरीबन परमात्मा नू महबूब जानिया और अपने आप नू महबूबा दी जगह दे उत्ते मन्निया है। तकरीबन सूफी संतां दा किरदार इस तरह दा है परमात्मा नू महबूब मन्नदे ने अपने आप नू महबूबा मन्नदे ने। तो जद परमात्मा महबूब है तो फिर लफज भी उस तरह दे वरतों विच लियाउणे पैणगे। भगत फरीद साहब जी ने लफज बयान किते अज न सुती कंत स्यो कंत मैंने परमात्मा कंत दा आखरी अर्थ वैसे हुंदा है पति ते साडा पति कौन है परमात्मा। अज मैं पति परमात्मा दा मलाप नहीं जानिया पति परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। जीव स्त्री परमात्मा दे संबंध विच कह रही है अज मैं परमात्मा दी नेड़ता नूं मन करके नहीं पा सके। ते परमात्मा दे नेड़े तन ते हुंदा नहीं हुंदा ते मन परमात्मा दे मलाप दा आनंद मन नूं मिलना है। मन ही परमात्मा पति दी शेज दे उत्ते जाएगा तन दा जाना ही बड़ा मुश्किल।
तन किवें लैके जाओगे, तन ने ते मर भी जाना है, मुक भी जाना है, तन बिरद भी हो जाता है, तन सड़ भी जाता है, तन पसम भी हो जाता है, जाना मन ने है परमात्मा दे दर दे उते। अज मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ पाया, जोड़दा समय रोज रोज सुबह तो शाम तक परमात्मा दे नाल अल्लाह दे नाल अपने मन नूं, अज किसे कारण दे करके मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया। मैं परमात्मा दे नाल सौ नहीं सकिया। सौन दा मतलब है मिलना। अंग मुड़े मुड़े जाए मेरे सारे शरीर दे अंदर बेचैनी है, मन दे अंदर बेचैनी है। ते बेचैनी किथे बनदी है? मन दे अंदर। मिलाप दा रस किथे बनदा है? मन दे अंदर। मिलन वाला कौन है? मन। अज मेरे मन दे अंदर बेचैनी है। बेचैनी किस गल दी है? क्योंकि जो परमात्मा रोज रोज मिलदा सी, उनु मिलन करके कोई ना कोई नवा रस जीवन दे अंदर रोज बनदा सी, नवा रस रोज पैदा हुंदा सी। अज परमात्मा दा मिलाप भी नहीं हो सकिया, किसे कारण मैं परमात्मा नु आराध नहीं सकिया। अज ओ रस भी नहीं बनिया, ते रस नहीं बनिया ते मन दे अंदर चिड़चिड़ापन ते क्रोध दा जन्म होया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੜਚਿੜੇਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਸ ਰੋਜ ਰੋਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਜ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਜ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਜੋ ਰੋਜ ਰੋਜ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਰੋਏਗਾ, ਮਨ ਕਲਪੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਸ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਤ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀ? ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ ਰਹਿਣ ਮੈਨੇ ਰਾਤ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜੋ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮ ਆਏ ਪਾਹੁਣ ਮੈਨੇ ਪਰਾਉਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪਰਾਉਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮ ਆਏ। ਤੋ ਅਰਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਸ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ, ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
मां भी ना रहे, पिता भी ना रहे, पत्नी भी ना रहे, पति भी ना रहे, तिया पुत्र भी किनारा कर जन, ते पदार्था वालों भी बिलकुल नगन हो जाए, मुफलस हो जाए, अति गरीब बन जाए, पदार्थ भी ना रहे, तन दौलत भी ना रहे, शरीर की तंदुरुस्ती भी ना रहे। इस तरह के मनुख का जीवन बेरसा होता है, बेरसा, क्योंकि जीवन चलना है किसी रस के आसरे ते। रस मिलता है सानू काम क्रोध लोभ मोह हंकार विचों, रस मिलता है सानू परिवार विचों, रस मिलता है पदार्थ विचों। हुण परिवार भी किनारा करके चला गया, पदार्थ भी कोल नहीं रहे, ते शरीर की तंदुरुस्ती भी नहीं रही, तो कहना पेगा ना जीवन बेरसा है। इस तरह का मनुख हार के कदी कदी एक फैसला ले लैंदा है कि जद मेरे कोल हुण रस ही नहीं, तो हुण मैं जीवन नूं रख के करना भी की है, जीवन दी लीला नूं खत्म कर दई है। तो इस तरह का मनुख फैसला लैंदा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मरकर बिना चैन आया तो किधर जाएंगे हम। वो कहिंदा है कि हुण अपने आप की हत्या कर ली है, आत्म हत्यारा बन जाना चाहिए, अपने जीवन की लीला अपने हथां दे नाल समाप्त कर लेनी योग है। पुछिए क्यों? वो कहिंदे जद जीवन दे अंदर रस ही नहीं, तो जीवन रख के करना भी की है, मां भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, भैन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तंदुरुस्ती भी नहीं है, ते फिर उस तो बाद पदार्थ भी नहीं है, कुछ भी ते कोल नहीं। तो जद कुछ भी पास नहीं, तो हुण जीवन नूं भी पास रख के की करना है, इहनूं खत्म कर लईए तां कि दुखां तों छुटकारा हो जाए। पर बड़ा वड्डा इक भरम है, अगर आत्म हत्या करन दे नाल जां मर जाण दे नाल दुखां तों छुटकारा हुंदा, तो फिर जो जन्म लैंदिआं सार कुछ बच्चे अपाही जन्म लैंदे ने, लूले लंगड़े जन्म लैंदे ने, नेत्रहीन जन्म लैंदे ने, कमले जन्म लैंदे ने, फिर यह जन्म क्यों ले रहे ने? आखिर किसी ना किसी कर्म का फल ही इन्हां नूं मिल रहा, किसी कर्म के फल कारण ही लूले लंगड़े अपाहिज नेत्रहीन या बावरे जन्म लेंदे ने। मरण तो बाद दुखां दा छुटकारा नहीं है, दुखां दा छुटकारा करन वास्ते सानू मिलिया है जीवन। जो मरते दम तक दुखी रहा, दुख दे विच जीवन चलाउंदा रहा, मरण तो बाद एकदम दुख किवें मुकेगा? अगर मरण तो बाद दुख मुक जांदा है, फिर ते किसे पाठ पूजा कथा कीर्तन भजन बंदगी दी लोड़ भी की है, क्योंकि मरना भी सारिया ने है, ते दुख भी सारिया दा गलों लै जाना है, मुक जाना है, फिर लोड़ की है तमाम चंगे कर्म करन दी, पाठ पूजा भगती दे।